0: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
1: शशि वो मैनहट्टन है।
0: मैनहट्टन
2: मैन आजमी हैट टोपी और मोमो टैन इन हिंदी
1: टैन मतलब वो धूप की छाप।

सिरक सबर की लड़ाई। जालम वजीदा खान नवाब बड़ी कोशिश की थी इसने छोटे साहबजादियां नूं वरगला के लालच दे के किवें इस्लाम धर्म दे विच लियांदा जाए। होरां दे डोलियां दा लालच दिता, धन दौलत दा लालच दिता, ऐथों तक आखिया कि तुहानूं पीर बना दिता जाएगा। कचहरी लगी हुई है, इस कचहरी दे विच वेखो कैसा इंसाफ पिया हुंदा है। एक पासे छोटे छोटे बच्चे मासूम जिंदड़ियां गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे छोटे साहबजादे, एक दी उम्र 7 साल दी है, एक दी उम्र 9 साल दी है। बस इन्हां बच्चियां दा दोष यही गिणिया जा रहा है कि यह गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे बच्चे हैं। वेखो इंसाफ किस प्रकार किया जा रहा है। पर धन है सिदक सबर। बाणी विच महाराज कहते हैं, कूड़ निखुट्टे नानका ओड़क सच रही। इतिहासक वार्ता है ए। बड़ी कोशिश की थी इन्हां बच्चियां नूं ईन मनावण दे वास्ते। इन्हां चंद लाइनां दे विच इस प्रकार बयान किया।

कदे जमीन ते पैर नहीं सी पाया, हमेशा मखमल दे गद्यां विच सौण वाले मक्खन मलाइयां नाल पाले होए, उमरां भी बड़ियां छोटियां छोटियां, पर गुड़ती मिली हुई है नाम दी अते अमृत दी। बड़ा लालच दिता, डराबे दिते, एथों तक भी किया कि सूबे ने आख्या, ऐ बचे हो तुहाडा पिता गुरु गोबिंद सिंह वो भी शहीद हो गया है, जितने सिंह सन वो सारे खत्म कर दिते गए ने, तुसी हुण साड़ी कैद विच हो, जे तुहानू छड़ दिता जाए तां तुसी की करोगे? आ वेखो जरा अमृत की शक्ति, उम्र का तकाजा नहीं, अमृत की शक्ति गुरु कलगीधर पातशाह जी की बख्शिश। ये छोटे छोटे बच्चे की जवाब देंदे ने, आखन लगे कि सानू पहला तो यह उम्मीद ही नहीं कि तू सानू छड़ देवेगा। सूबे नू क्या, पहला तो सानू उम्मीद नहीं कि तू सानू छड़ देवेगा, पर जे किधरे तू छड़ भी देवे असी बाहर जावांगे, होर सिंघां नू तैयार करांगे अमृत छका करके, फौज तैयार करांगे, ते ओ फौज जदों तैयार बर तैयार होवेगी फिर जुलम दे टाकरे ते आके मैदान जंग विच डटांगे, भावें पोरियां पोरियां कट के शहादतां क्यों ना प्राप्त करनियां पैण, अखीरले दम तक जुलम दे खिलाफ लड़दे रहांगे। इत्थे एक गल होर वर्णन योग है जो इतिहास दे विच जिक्र आउंदा है कि यह गल सुनी तां मलेरकोटले दा नवाब अश अश कर उठिया, धन गुरु गोबिंद सिंह, धन गुरु गोबिंद सिंह। लेकिन कोल ही खड़िया सी सुचानंद दीवान, कहन लगा, ए नवाब साहब, सब दे बच्चे हमेशा सब ही हुंदे हैं, इन्हां दा मूंह बाहर कढ़न तो पहला पहला ही सिर फेर दिता जाना चाहिदा है, इन्हां नूं खत्म कर देना चाहिदा है। ते फतवा भी की लाया, नीहां दे विचण दिओ, जिंदा ही नीहां दे विचणवा दिता। पर धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह, तन उन्हां दी सिखी, तन बख्शिश अमृत दी दात, छोटे छोटे मासूम बच्चियां ने जिंदा ही नीहां दे विच अपने आप नूं चिणवाना मंजूर कर लिया, पर सिदक निहारिया, सिदक तो नहीं डोले।

0: useless.
1: Okay.

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन, दफन, फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कवर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230-3030 ब्रेडफोर्ड 7230-3030।

0: नफ्सेन जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30, दस ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: सनराइज म्यूजिक, इट्स अ क्लासिक हिट। फ्लैशबैक, फ्लैशबैक, एज़ वी गो डाउन मेमोरी लेन। वेयर वर यू व्हेन यू फर्स्ट हर्ड दिस?

0: नफसेन जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 दस ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274056014 सोफी ज्वेलर्स।

मैं काफी सोचता था मम्मी दे बारे, बाला और मोहम्मद पाजी दे बारे, पर सबसे ज्यादा रूपा दे बारे।

0: नफ्सेन ज़ायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
3: A classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: Looking for your dream home in Bradford?
2: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
1: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
2: Bellevue Residences.
1: Luxury, space and style.
2: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.

0: आज तू क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dockworth Lane, ब्रेडफोर्ड 9। टेलीफोन नंबर 01274-491-442।
2: The classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274288252 पर कॉल करें।

0: Looking for your dream home in Bradford?
1: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
0: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
1: Bellevue Residences.
0: Luxury, space and style.
1: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.
2: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230300 ब्रैडफोर्ड 7230300 जीरो
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

दुआओं के फूल आपके नाम करते हैं, आपकी चाहतों को, आपकी मोहब्बतों को सलाम करते हैं। बन जाए आपकी ज़िंदगी खुदा की रहमतों और बरकतों से जन्नत, यही दुआ हम सुबह, दोपहर और शाम करते हैं। 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है। शहनाज मंसूर आपकी खिदमत में हाजिर है। कबूल कीजिए मेरा मोहब्बत भरा चाहत भरा खलूस की अता गहराइयों से। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह बख़ैर और जुमा की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करती हूँ सामीन मेरी आवाज़ ने आप तमाम को खैरियत से पाया होगा। आपका पिछला हफ्ता और आपका आज का दिन अभी तक खैरियत से गुजर रहा होगा। आप तमाम खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपनों के साथ होंगे या अपने कामकाज में मसरूफ़ होंगे और इस खूबसूरत, बेहद खूबसूरत और हसीन मौसम का मज़ा ले रहे होंगे। आपको आज का ये खूबसूरत दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज हमारी मुलाकात का दिन है, आपकी दुआएँ हमें लेकर आई हैं एक बार फिर से इस मकाम पर जहाँ हम और आप मिलते हैं, आपसे बातें होती हैं, मुलाकातें होती हैं, दुआओं, मोहब्बतों और चाहतों का सफ़र होता है जो कि हम सब मिलकर तय करते हैं। आज भी इसी उम्मीद और यकीन के साथ आए हैं, आपका साथ पाएंगे, आपकी दुआएं पाएंगे और आपका प्यार भी पाएंगे और आपके संग संग ये सफ़र हम तय करेंगे और इसे लेकर जाएंगे अंजाम तक। हमेशा से हमारी दुआ रहती है कि अल्लाह पाक आपको और आपके साथ जुड़े तमाम रिश्तों को, जो भी खूबसूरत रिश्ते हैं, आपके माए बाप हैं, आपके वालदैन हैं, आबाई अजदाद हैं, आपके बच्चे हैं, आपके हमसाए हैं, आपके कज़न्स हैं या आपके दोस्त हैं, उन सबको अल्लाह पाक हमेशा अपनी रहमतों और नहमतों से नवाजे और उन सब की ज़िंदगी में खैर बरकत, अमन, सेहत, तंदरुस्ती, खुशहाली, मोहब्बत और दुनिया और आखिरत की भलाई अल्लाह पाक अता फरमाए और हर लम्हा आप तमाम के लिए खैर आफियत का हो। खुदा ताला हर मुश्किल आप तमाम के लिए आसान करे और हर आने वाला दिन आपके लिए ढेरों खुशियां, रहमतें और बरकतें लेकर आए। आप हमेशा शाद व आबाद रहें, ये हमारी दिली दुआ रहती है आपके साथ। इन्हीं दुआओं के साथ आपको छोड़कर जाते हैं और फिर इन्हीं ही दुआओं के साथ आपसे आकर मिलते हैं और आपसे यही दुआएं पाते हैं जिनकी हमें अशद ज़रूरत रहती है। आप आते हैं तो हमारा सफ़र जो है वो खूबसूरत और हसीन हो जाता है हमेशा की तरह। आपसे हमारी और आपकी मुलाकात जो है वो रहेगी 2 बजे तक। पुराने सदाबहार गीत होते हैं, यादों का सफ़र होता है, आप हमारे हम सफ़र होते हैं और मिलजुल कर हम ये यादें जो है वो ताज़ा करते हैं, आपकी यादें भी और अपनी यादों को भी। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है पुराने दिनों की याद को ताज़ा करके, उन गलियों मोहल्लों की सैरें करके जहाँ हम पले बड़े हैं और एक बार फिर से वो लम्हे ताज़ा करने के लिए आते हैं आपकी खूबसूरत आवाज़ों के साथ, आपकी मनपसंद आवाज़ों के साथ और वो आवाज़ें जो आपके दिल में रची बसी हुई हैं, जिन्हें आप सुनते हैं, बार बार सुनते हैं और बार बार सुनने को जी चाहता है। आप भी अगर हमारे प्रोग्राम में शिरकत करना चाहें, अपनी मनपसंद आवाज़ सुनना चाहें, अपने नाम के साथ करना चाहें या अपनों के नाम के साथ, तो नंबर रहेगा 01274306666। मिजाज जाना चाहेंगे आपके, हमारे मिजाज आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, खुशबाश हैं और आपकी दुआएं हमेशा चाहते हैं, चाहते रहेंगे और आपसे इसी बात की उम्मीद और यकीन है कि आप हमेशा यूं ही अपनी दुआएं हमें देते रहेंगे। तो इससे पहले के यादों का सफ़र का आगाज़ किया जाए, आपको हिट ऑफ द आवर सुनवाएंगे और फिर उसके बाद आपसे मिलेंगे टाइम चेक के बाद।

0: मेरे यार दिल दारा जरा सुन सुन सुन। जी हाँ जी, एस पी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ और साथी उनके उनका साथ दे रहे थे। आपने हिट ऑफ द आवर सुना। आपको टाइम बताते हैं और फिर लेंगे छोटी सी ब्रेक।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का टाइम है 11:15। ब्रेक टाइम है, मिलते हैं ब्रेक के उस पार।

0: जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कब्र को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 10 ब्रेडफोर्ड 7230 30।

जिंदगी खत्म भी हो जाए अगर न कभी खत्म हो उल्फत का सफर, चलो दिलदार चलो। बहुत ही खूबसूरत गीत, सदाबहार गीत, सदाबहार आवाजें आपने सुनी 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे। आप हमें सुनते हैं पूरी दुनिया में 100.6 FM पे। आप सुनते हैं कालदेल और इर्द गिर्द के इलाकों में डीएबी के जरिए। आप सुन रहे हैं कीथली, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हालिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एक्रिंगटन और मिल्टन कीन्स में। मैं हूं शहनाज मंसूर और आपके साथ साथ हूं दोपहर 2 बजे तक पुरानी सदाबहार गीतों के साथ, पुरानी यादों के साथ और आपके संग संग यादों का सफ़र हम तय करेंगे। और आपके डेडिकेशंस के लिए लाइनें खुली हैं और नंबर है 01274306666। अगर आप भी अपने नाम के साथ या अपनों के नाम के साथ गीत जोड़ना चाहें, किसी को जुमा की मुबारकबाद देना चाहें, तो लाइनें आपके लिए खुली हैं। और जो है ये सिलसिला हम 2 बजे तक जारी रखेंगे। 12 बजे की खबरों के बाद आपकी डेडिकेशंस भी होंगी। तो बढ़ते हैं एक और खूबसूरत से गीत की जानिब, जो कि जी हाँ जी आप तमाम के लिए है जो भी इस वक्त सनराइज़ की नशरियात को सुन रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी की प्यारी आवाज़, सदाबहार आवाज़, नहीं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ नहीं, ए रफ़ी की आवाज़ है, इसे रहने देते हैं। ये सुनते हैं जॉली मुखर्जी की आवाज़ में और प्यारा सा गीत फिल्म चांदनी का। श्री देवी की याद आ जाती है ये गीत सुनते ही, यकीनन आपको भी अच्छा लगेगा।

चांदनी मैं तेरी चांदनी, बहुत ही खूबसूरत गीत, शोक चंचल सा गीत आप सुन रहे थे सनराइज रेडियो पे। शहनाज मंसूर आपके साथ साथ है, आपके डेडिकेशंस का सिलसिला भी होगा 12 बजे की खबरों के बाद। आप तमाम साथियों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जो कि प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं और जिनकी कॉलें मौसूल हो रही हैं। आप सभी को खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। हीरा भाई, आपकी खान आपकी कॉल जो है वो मिस हो गई, कोई बात नहीं, अभी बहुत वक्त है। अगर आपके पास वक्त हो तो ज़रूर फ़ोन कीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे ज़रूर बात होगी। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत से गीत की जानिब, लता मंगेशकर की आवाज़ में है, जो कि आपकी भूली बिसरी यादों को एक बार फिर से ताज़ा करने आ रही हैं। धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार, कोई आता है

यू तड़प के न तड़पा कोई आता है। जी हाँ जी, बहुत ही खूबसूरत गीत और बहुत ही प्यारी आवाज़ में आपने सुना मनुत्री बॉयटो FM पे। और अब आपको सुनवाते हैं एक बार फिर से, जी हाँ जी, कमर्शियल्स।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

ये रात भी क्या रात है, हर रात में तेरी याद है। ये रात भी क्या रात है, हर रात में तेरी याद है। जिस रात में तेरी याद नहीं, वो रात भी मुझे याद नहीं।

गैरों के शेरों को वो सुनने वाले हो इस तरफ भी कर। बहुत ही खूबसूरत गीत, बहुत ही प्यारी आवाज़ जिस जो कि हमने आपके गोशे गुजार की 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे आप सुन रहे हैं हमें पूरी दुनिया में। मैं हूँ शहनाज मंसूर और आपके साथ साथ हूँ दोपहर दो बजे तक। आज पता नहीं क्या हो रहा है, सबकी सब कॉलें मिस हो रही हैं। आयरा खान जी आपकी कॉल दोबारा मिस हो गई, हाजरा जी आपने कॉल की आपकी कॉल भी मिस हो गई, और हमें हमारी बात हुई हमारे भाई मोहम्मद अकर भाई, आपसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपने प्रोग्राम में शिरकत की, आपने गीत की फरमाइश की है, मैं ढूंढूंगी, मिल गया तो प्रोग्राम दौरान प्रोग्राम आपके लिए ज़रूर पेश करूंगी। याद आवरी का प्रोग्राम में हिस्सा लेने का बहुत बहुत शुक्रिया। स्मेना जी आपका मैसेज मिला, बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी प्रोग्राम को सुन रही हैं। मिस्टर मिसेज हुसैन आप भी प्रोग्राम में शिरकत कर चुकी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, ढेरों दुआएँ हैं आपके लिए भी, और आपने तमाम सनराइज़ की टीम को और हमारे तमाम सामीन को जुमा की दिली मुबारकबाद पेश की है और ढेरों दुआएं भेजी हैं। बेहद शुक्रिया आप तमाम साथियों का जो कि हमारे प्रोग्राम की जीनत बन चुके हैं, हमारे साथी हैं, हमारे हम सफ़र हैं और हमारे साथ साथ हैं, आपका बेहद शुक्रिया।

दिल का भंवर करे पुकार। मोहम्मद रफी जी को सुन रहे थे आप 103.2 FM पे, और आप तमाम साथियों का बेहद शुक्रिया अदा करूंगी। प्यारी सी बहन हाजरा जी, आपका आपसे बात हुई बहुत अच्छा लगा। दो हफ्ते से आपसे बात नहीं हो पा रही थी क्योंकि आप बहुत बिजी हैं, आपकी फैमिली इंडिया से आई हुई है, आपके बच्चे आए हुए हैं ईद मनाने के लिए आपके पास। आपको बहुत बहुत मुबारक हो बच्चों का स्टे, और अल्लाह करे ये खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में हमेशा कायम और दायम रहें, आपके बच्चे हमेशा जो है वो आपके ताबेदार रहें और आपकी इसी तरह मोहब्बत और खिदमतगार रहें आपके। हमारी दिली दुआ है आप बहुत खुश थी, आपको ये खुशी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके और ये जान करके हमारी बहना जो है वो जो ये ईद है ना आपकी वो प्रॉपर मुकम्मल ईद होगी, क्योंकि फैमिली के साथ जो ईद होती है वही मुकम्मल ईद होती है, और बच्चे पास हों तो फिर क्या कहना। पोतियाँ पोते हों, बहुएँ हों, बेटियाँ हों, बहन भाई हों, तो ईद का मज़ा तभी आता है। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको आने वाली ईद भी, और आपकी फैमिली की जो है वो आए हुए हैं वो भी आपको मुबारक हो। और आप मेरी दुआ है कि बाकी के दिन भी जो आपके साथ गुजारेंगे बहुत ही अच्छे और खूबसूरती से गुजरें, और आप इंजॉय करें, हर लम्हा आपके लिए खुशियों भरा हो, और जब जाएँ तो आपकी दुआएँ साथ लेकर जाएँ और आपका और आपके लिए ढेरों प्यार और मोहब्बत छोड़ कर जाएँ, और हमेशा आपके दिलों में बसते रहें। और आपकी दुआओं में भी बहुत बहुत शुक्रिया यादावरी का, और आपने हमें भी दुआएं दी हैं, और तमाम सामीन को भी और सनराइज़ की तमाम टीम को भी आपका बहुत बहुत बहुत शुक्रिया यादावरी का। हमेशा अच्छा लगता है जब आती हैं आप, और आपसे मिलना, आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है, और आपका प्यार जिसकी हमेशा हमें ज़रूरत रहती है आपने हमें दिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। तो आपके नाम चंद अशार हैं, कोई दे कोई तबीब आके हमें ऐसी दवा भी, दे कोई तबीब आके हमें ऐसी दवा भी, लज्जत भी रहे दर्द की, मिल जाए शिफा भी। ऐसा होता है क्या? या तो दर्द बाकी रहता है, दवा काम नहीं करती, या फिर जो है शिफा मुकम्मल हो जाती है। लेकिन ये कहते हैं, देख कोई तबीब आके हमें ऐसी दवा भी, लज्जत भी रहे दर्द की, मिल जाए शिफा भी। एक अदा से दिल चलने, एक अदा तसल्ली की एक अदा से दिल चलने, एक अदा तसल्ली की, यार मन सितमगर भी है, यार मन मसीहा भी। बहुत खूब, बहुत ही प्यारे अशआर थे, आपको ज़रूर अच्छे लगे होंगे।

0: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
1: हमारे स्टूडियो के घड़ी में यूके का टाइम है 11:46 और ये ब्रेक टाइम है बड़े ब्रेक की जानिब और मिलते हैं ब्रेक के बाद।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewelry. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD94QU. Call 01274-488-935.

दिल तो दिल है, किसी दिन मचल जाएगा, चाहे हाँ कहिए चाहे ना कहिए। जी हाँ जी, जब दिल किसी पे आता है तो रोक के नहीं रुकता। मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपके गोशे गुजार किया 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे आप सुनते हैं पूरी दुनिया में। DAB के जरिए आप सुनते हैं किसलिए इलक्लिक, स्किप्टन, लीड्स, हालिफैक्स, मैनचेस्टर, इस्लाम कशर, ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एक्रिंगटन, मिल्टन कीन्स में, और 100.6 FM पे आप सुनते हैं वेस्ट यॉर्कशायर में और कालदेल के इलाकों में। शहनाज मंसूर आपके साथ साथ है, यादों का सफ़र है, मोहब्बतों, चाहतों और दुआओं का सफ़र होता है जिसे हम आपके साथ साथ तय करते हैं। आज भी आपका साथ मिल रहा है, आपका प्यार मिल रहा है, आप हमारे साथ साथ हैं, हमारे हम सफ़र है, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ साथ आगे बढ़ना इस सफ़र में। और इस घंटे की तकमील भी होने को आ रही है और आपने हमारा साथ निभाया, हमारी हौसला अफजाई की, आपके संग संग हम बढ़ेंगे अगले घंटे की जानी भी। अभी चंद मिनट बाकी हैं और मुझे उम्मीद है, यकीन है कि दो घंटे जो बाकी बचे हैं आप यूँ ही हमारे साथ साथ रहेंगे। यसुदास की आवाज़ में ये बहुत ही प्यारा सा गीत है, आइए सुनते हैं। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए।

जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए। यसुदास की खूबसूरत आवाज़ में खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे। अब आते हैं मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में एक और खूबसूरत सा गीत, आपके गोशे गुजार करते हैं।

0: बाजे इश्के दी जीत लूंगी सोने मैं रब तो दुआ मांग के। हदीका कियानी की खूबसूरत आवाज़ में हिट ऑफ द आवर आप सुन रहे थे 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे आप सुन रहे हैं हमें पूरी दुनिया में। मैं हूँ शहनाज मंसूर और आपके साथ साथ हूँ दोपहर जी हाँ जी 2 बजे तक। पहले घंटे में आपने बहुत ही प्यार और मोहब्बत और दुआओं के साथ हमारा साथ निभाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम साथियों का शुक्रिया जो कि हमारे प्रोग्राम की जीनत बन चुके हैं, हमारी महफिल में शिरकत कर चुके हैं। आपके हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि हमारे प्रोग्राम में आपने शिरकत की, हमें फ़ोन किया, हमसे बातें हुई, मुलाकातें हुई। आपसे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ये जानकर के आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और प्रोग्राम को सुन रहे हैं, गीतों को एंजॉय कर रहे हैं। तो आपका साथ हमेशा की तरह हमें बहुत प्यारा है और आपके साथ साथ ही हमें आगे बढ़ना है और आपको टाइम भी बताना है।
1: सनराइज रेडियो Your soundtrack, your time check.
0: जी हाँ जी, हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का जो टाइम है वो है 9:12 और छोटी सी ब्रेक आन पहुंची है, उसकी तरफ बढ़ेंगे और ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे।

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230 30 10 ब्रेडफोर्ड 7230 30।

आपको पहले भी कहीं देखा है? जी हाँ जी, ज़रूर देखा है। कहते हैं कि दुनिया गोल है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिल ही जाता है। बहुत ही खूबसूरत गीत था, दो गाना था जिसे आपने सुना। कमर्शियल्स के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं जी आई एन, कहते हैं सनराइज पे। आपकी अपनी बहन शहनाज मंसूर आपके साथ साथ है दोपहर दो बजे तक पुराने सदाबहार गीतों के साथ, और आपकी डेडिकेशंस भी हम लेंगे इस घंटे में। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया जिनके नाम हमारी लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। आपके नाम भी गीत होंगे और आपकी पसंद के गीत भी ढूंढने की कोशिश करूंगी। मोहम्मद अकरम भाई, आपने जिस फिल्म से गीत सुनना चाहा था वो फिल्म तो यहाँ पर है, लेकिन मैं देखती हूँ कि वो गीत इसमें है जो कि आप जिसकी आपने फरमाइश की है कि नहीं। वादा नहीं करती, लेकिन मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि वो आपका गीत आप तक पहुँचा सकूँ। नहीं तो जो गीत भी आपको अच्छा लगेगा वो आप ही के लिए होगा। आपने प्रोग्राम में शिरकत की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने प्यारे से छोटे भाई, जी हाँ जी, वाजिद भाई हुडर्सफील्ड से आपका। हमेशा की तरह आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। आपकी तबीयत हमेशा नासाज रहती है, तो मैं तो कहती हूँ कि आप हमेशा खुदा का शुक्र अदा करें कि जैसे भी है अल्लाह ने आपको बोलने की ताकत दी है, आपको हिम्मत दी है, आप सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं। जो भी आपको बीमारी है उसके लिए हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक वो बीमारी दूर फरमाए और आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। मायूसी अच्छी बात नहीं होती, हमेशा खुदा से उम्मीद रखना चाहिए और खुदा बेहतर करता है हमेशा। बस यकीन होना चाहिए और दुआ होनी चाहिए। हम हमेशा आपके लिए दुआ करते हैं, और अपने सामीन से भी आपने कहा कि इल्तजा कीजिए कि वो आपके लिए दुआ करें, तो हम सब की दुआएं हैं आपके साथ हैं। बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और आप हंसते मुस्कुराते किसी रोज़ आए और कहें कि बाजी आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे उस दिन का इंतज़ार रहेगा। और आप हमेशा मुझे ये याद दिलाते हैं कि आप ये प्रोग्राम नहीं रहें कि मुझे सुनते आ रहे हैं बहुत अरसे से, जबकि आप बच्चे थे। मुझे याद है कि जब मैंने पहले बहुत अरसा पहले 20-22 साल पहले प्रोग्राम किया था, तो उन दिनों भी आप आया करते थे, तो आपको मैंने पंजाबी का प्रोग्राम किया था, आपको बहुत पसंद था, पंजाबी के गीत आपको अच्छे लगते हैं और आपको वो बातें मेरी अभी तक याद हैं, वो याद दिलाते भी हैं मुझे। और आप बार बार कहते हैं कि एक बार फिर पंजाबी का प्रोग्राम करो या पंजाबी में बात करो, तो वो कहते हैं ना कि जिस तरह का माहौल हो उस किस्म की बातें होनी चाहिए। उर्दू का प्रोग्राम होता है, उर्दू के गाने होते हैं, पंजाबी बोलनी आती है क्योंकि हमारी ज़बान जो है वो पंजाबी है, तो इसलिए उसमें भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम पंजाबी बोलें या उर्दू बोलें। लेकिन आपने कहा कि आप हमेशा से सुनते आए हैं और आपको वो प्रोग्राम जो वो गीत और वो बातें अभी तक याद हैं, वो हमेशा याद दिलाते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपको अभी तक याद हैं हमारी बातें भी, हमारे गीत भी, हमारा प्रोग्राम के बारे में हर एक बात। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं हमेशा हमारे साथ हैं और हमारी दुआएं आपके साथ रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, कोशिश करेंगे कि पंजाबी का प्रोग्राम भी आपके लिए कभी पेश करें मौका मिला तो आपके लिए पंजाबी का गीत भी आएगा और उर्दू का गीत भी आपके लिए ज़रूर लगाएंगे। आपके यादावरी का, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, और अपने तमाम सामीन को, अपने तमाम दोस्तों को जुमा की मुबारकबाद पेश की है, सनराइज़ की टीम को भी, और ढेरों दुआएं भेजी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहा वालेकुम सलाम, और ढेरों दुआएँ हैं आपके लिए भी।

नीयत शौक भर न जाए कहीं, नीयत शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं। ना मिला कर उदास लोगों से, ना मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं। आरजू है कि तू यहाँ आए, आरजू है कि तू यहाँ आए, और फिर उम्र भर न जाए कहीं। जी जलाता हूँ और सोचता हूँ, रायगां ये हुनर न जाए कहीं। आओ कुछ देर रो ही ले नासिर, आओ कुछ देर रो ही ले नासिर, फिर ये दरिया उतर न जाए कहीं।

लीजिए जी, इश्क के इम्तिहान। आशा भोसले की खूबसूरत आवाज़ आप सुन रहे थे सनराइज़ रेडियो पे। शहनाज मंसूर आपके साथ साथ है। तो बढ़ते हैं, अब डेडिकेशंस का सिलसिला शुरू करते हैं। आप तमाम साथियों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं, जी आयनू कहते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। और गुड आफ्टरनून, और आपका शुक्रिया कि आप हमारे साथ साथ हैं, प्रोग्राम को सुन रहे हैं, गीतों को एंजॉय कर रहे हैं। मैं माजत चाहूँ कि मोहम्मद अकरम भाई, मैंने बहुत कोशिश की, आपका गीत नहीं मिल पाया, तो मुझे उम्मीद और यकीन है कि आने वाला गीत आपको अच्छा लगेगा। ये गीत, जी हाँ जी, मैं नाम करना चाहूँगी मिस्टर मिसी हुसैन, आपके नाम करना चाहूँगी। और यही गीत मैं नाम करना चाहूँगी, मोहम्मद अकरम भाई आपके नाम करना चाहूँगी, हाजरा जी आपके नाम करना चाहूँगी, और आपके साथ साथ यही गीत मिस्टर मिसी हुसैन आपके नाम भी करना चाहूँगी। उम्मीद और यकीन के साथ कि आप तमाम को ये गीत अच्छा लगेगा। सलीम रज़ा की आवाज़ में है, बहुत ही खूबसूरत गीत है, सदाबहार गीत है। जब भी सुनते हैं हमारे दिल को बहुत भाता है, बहुत अच्छा लगता है, और इसे बार बार सुनने को भी जी चाहता है। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों।

तो वो दिया है मेरे दिल जो के बुझा हो शाम से, फूटेगी कोई किरण तुझको है इंतजार क्यों। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। सलीम रजा की बेहद खूबसूरत आवाज में ये सदाबहार गीत, यादों से भरपूर गीत, आप तमाम दोस्तों के गोशे गुजार किया। वो कहते हैं कि ना उम्मीद कभी नहीं होना चाहिए, उम्मीद पे दुनिया का जो है वो दारो मदार है। उम्मीद हो, इरादा हो तो इंसान सब कुछ पा लेता है। जी हाँ जी, बस यकीन होना चाहिए। तो यकीनन आपको ये गीत अच्छा लगा होगा। और बढ़ते हैं एक और खूबसूरत से गीत की जानिब, और ये गीत मैं नाम करना चाहूँगी, जी हाँ जी नाम करना चाहूँगी, वाजिद हुडर्सफील्ड से आपके नाम करना चाहूँगी, आपकी जानिब से आपके तमाम दोस्तों के नाम करना चाहूँगी, आपकी तमाम टीम जिनमें शामिल हैं महबूब इलाही हैं, चौधरी मुजफ्फर हैं, अब्दुल कयूम भाई हैं, सुल्तान महमूद कराची वाले हैं, आमिर शहजाद हैं, और तारिक भट हैं, कियानी मुदस्सर हैं, परवेज़ ख़ान हैं, और इसके अलावा अयूब चौहान भी हैं, जावेद मीर भाई हैं, चौधरी आसिफ रियासत हैं, और तारिक जुल्फी भाई हैं, और हीरा खान जी हैं। इन तमाम के लिए आपकी जानिब से ये प्यारा सा गीत इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आप सब इंजॉय करेंगे और हमारे सामीन भी।

0: चले,
1: हम आज अपने पीछे कदम के निशान बना के चले। जी हाँ जी, कोई ऐसा काम कर जाए कि दुनिया आपको याद करे। बहुत ही खूबसूरत गाना था जिसे आपने सुना 103.2 FM पे। अब आते हैं एक और खूबसूरत सा गीत शब्बीर कुमार की आवाज़ में, और ये गीत मैं सुनवाना चाहूँगी अपने बहुत ही मोहतरम भाई हीरा खान जी, आपके नाम करना चाहूँगी। आपने प्रोग्राम में शिरकत की हमेशा की तरह, आपने तमाम दोस्तों को आपने दुआएं भेजी हैं, अस्सलाम वालेकुम कहा है, जुमा की मुबारकबाद पेश की है, और सनराइज़ की तमाम टीम को भी बेहद शुक्रिया आपका। हमेशा की तरह आपने बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ प्रोग्राम में शिरकत की और हमें भी दुआएँ दी और तमाम सामीन को भी दुआएँ दी हैं, जिसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। तो ये प्यारा सा गीत आपके नाम करूँगी और आपकी जानिब से आपके तमाम

तारिक भट्ट हैं उनके नाम, कियानी मुदस्सर भाई के नाम, परवेज़ ख़ान के नाम, आमिर शहजाद के नाम, महबूब इलाही के नाम और जितने भी आपके दोस्त सुन रहे हैं उन तमाम के नाम ये प्यारा सा गीत और हमारी जानिब से हमारे तमाम सामेईन के लिए है ये खूबसूरत शौक चंचल सा गीत।

ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा, परमानेंट हो गया। अगर परमानेंट हो गया तो फिर तो ठीक है, शुक्र शुक्र करना चाहिए रब का कि परमानेंट ही हो जाए। बहुत ही खूबसूरत गीत था, अशोक चंचल सा गीत था, बहुत ही प्यारी मूवी से लिया गया, हम सब की मनपसंद मूवी से लिया गया था ये गीत कुल्ली से। यकीन आपने इंजॉय किया होगा। और अब बढ़ते हैं एक और खूबसूरत से गीत की जानिब। थोड़ा सा उदास है लेकिन यकीन आपको अच्छा लगेगा ये गीत। मिस्टर मिसी हुसैन आपके नाम करना चाहेंगे और यही गीत मैं नाम करना चाहूँगी, हाजरा जी आपके नाम करना चाहूँगी, और आपके साथ साथ यही गीत मुझे उम्मीद और यकीन है हिना शौकत आपको भी अच्छा लगेगा। आपकी जानिब से एजाज के नाम, उस्मान के नाम और शौकत भैया के नाम, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि हमारे सामीन भी इसे इंजॉय करेंगे। बिछड़े हुए परदेसी लौट के आना तू, हाजरा जी आपके लिए भी है।

0: जो बात कही तूने वो बात निभाना तू, वादे पे ते जीती हूँ, इतनी है अरज मेरी, लौट के आना तू। जी हाँ जी, लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ में ये बहुत ही प्यारा सा गीत था, दिल को तारों को छेड़ने वाला गीत था, ऐसा गीत था जो कि आपके दिल की गहराइयों तक पहुंच जाता है, इसको आप महसूस करते हैं। जी हाँ जी, बहुत ही खूबसूरत शायरी थी और बहुत ही प्यारी आवाज़ लता जी की आवाज़ में ये गीत आप तमाम के गोशे गुजार किया, आपको अच्छा लगा, अच्छी बात है। सुमेना जी, आप ही के लिए था और आपकी तमाम की टीम के लिए भी गीत आएगा, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आपको अभी टाइम बताना है और फिर ब्रेक की जानिब हम बढ़ेंगे।
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का जो टाइम है वो है 12:45 और ब्रेक लेते हैं।
2: The greatest station, radio station in the world, Sunrise Radio.
3: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
4: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
3: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
4: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
5: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
6: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी। लता जी की प्यारी आवाज में ये बहुत ही प्यारा गीत सदाबहार गीत आप सुन रहे थे 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे आप सुनते हैं हमें पूरी दुनिया में। कालदेल में आप सुनते हैं 100.6 FM पे और वेस्ट और अक्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर में भी। डीएवी के जरिए आप सुनते हैं ब्रैडफोर्ड लीड्स केटली इल्कली स्किप्टन हैलिफैक्स मैनचेस्टर ईस्ट लंकाशायर ब्लैकबर्न बर्नी डार्विन नेल्सन एक्रिंगटन और मिल्टन कीन्स में आप सुन पाते हैं हमें पूरी दुनिया में भी आपके जरिए। चाहे आप वेबसाइट पे या ऐप के जरिए गूगल पे आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं और 24 घंटे सनराइज आपके साथ साथ रह सकते रहेगा और जब चाहें जिस वक्त चाहें आप सनराइज को सुन सकते हैं। तो मैं हूं शहनाज मंसूर आपके साथ साथ हूं दोपहर 2 बजे तक। प्रोग्राम का दूसरा घंटा भी ख़त्म होने को आ रहा है, सिर्फ 6 मिनट बाकी हैं। आप तमाम साथियों का बेहद शुक्रिया जो कि हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत बन चुके हैं और हमारे प्रोग्राम को आपने बहुत हंसी और ख़ूबसूरत बनाया। इस सफ़र को आपके संग संग आगे बढ़ना बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे उम्मीद और यकीन है कि इस सफ़र के अख्ताम तक आप हमारा साथ निभाएंगे और यूं ही अपने प्यार और मोहब्बतों के साथ हमारे साथ साथ रहेंगे। आपका साथ का बहुत बहुत शुक्रिया। ये आने वाला गीत हिना शौकत आपके नाम, एजाज के नाम, उस्मान के नाम और मिस्टर मिसी हुसैन आपके नाम होगा, समीना जी आपके नाम होगा और आपकी जानिब से जेबन के लिए होगा, नायला के लिए होगा, जुबीना के लिए होगा, नसरीन के लिए होगा, फरजाना के लिए होगा, शकीला भी आपके साथ साथ हैं, सुबिया हैं आपके साथ और जितनी भी आपकी सहेलियाँ आपके साथ हैं उन तमाम के लिए होगा ये खूबसूरत सा गीत और हमारी जानिब से आप तमाम साथियों के लिए जो भी सनराइज की नशियात को सुन रहे हैं। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे फिर भी कभी अब नाम को तेरे। मिसेस कौर आपके लिए भी है ये गीत।

चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज़ मैं न दूंगा। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत गीत है जिसे आप सुन रहे हैं। और अब खबरों का वक्त भी करीब आ रहा है, 1 बजे की खबरें आप सुनेंगे, इंटरनेशनल न्यूज़ होंगी जो कि आप सुनेंगे सनराइज रेडियो पर। और ख़बरों के बाद हमारी आपसे मुलाकात होगी प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी घंटे में। अभी तक साथ निभाने का बेहद शुक्रिया, शुक्रिया अदा करती हूँ आपने बहुत ही अच्छे से भाई, जी हाँ जी तारिक सूफी भाई, आपका आपने प्रोग्राम में शिरकत की, आपने अपने तमाम दोस्तों को सलाम भेजा है और जुमा की मुबारकबाद भी पेश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके लिए गीत होगा और आपके दोस्तों के लिए भी अगले घंटे में, यादावरी का और आपके दुआओं का और आपके साथ का बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का वक्त है, खबरों की जानिब बढ़ेंगे। खबरों के फौरन बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इसी मकाम पर, जाना नहीं, हमारे साथ साथ रहना और इस सफ़र में आखिर तक हमारे इस सफ़र को खूबसूरत बनाना आपका काम है। तो बढ़ेंगे खबरों की जानिब और मिलते हैं खबरों के बाद आपसे।

क्यों ढोले दा क्यों माये दा गीला करा मैं तो सोवारी बिस्मिल्ला करा। जी हाँ जी, बिस्मिल्ला करते हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। प्रोग्राम के तीसरे घंटे में हम दाखिल हो चुके हैं, आपका खैर मकदम है। जी हाँ, यानो खुश आमदीद, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का जो कि प्रोग्राम के शुरू से हमारे साथ साथ हैं, हमारा साथ निभा रहे हैं, प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, गीतों को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी यादों को एंजॉय कर रहे हैं, अपने भूले बिसरे दिनों को याद कर रहे हैं। और आपके साथ साथ हम भी यादों का ये सफ़र बहुत इंजॉय करते हैं क्योंकि आप इसे इंजॉय करते हैं। आपका बेहद शुक्रिया। सायरा जी, आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हिस्सा लिया अपनी मसरूफियत के बावजूद, काम काज छोड़ के घर का, तो आपने हमें फ़ोन किया, आपसे प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें हुई, बहुत अच्छा लगा। आपने सब सामेन को, सनराइज़ की तमाम टीम को जुमा की मुबारकबाद की पेश की है, हज की मुबारकबाद पेश की है, और आपने इसके अलावा ईद की भी। जी हाँ जी, ईद उज़्ज़ोहा जिसे हम बड़ी ईद भी कहते हैं, ईद बकरा भी कहते हैं, और जो है वो इस ये ईद जो है बड़ी होती है, वाकई 3 दिन की होती है और 3 दिन कुर्बानियाँ भी होती हैं। तो आप सबको जो कि इस ईद की खुशियां मना रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, आप सबको सबको भी हज मुबारक, ईद मुबारक हमारी जानिब से भी बहुत बहुत शुक्रिया। सायरा जी, बढ़ते हैं, छोटी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं।

नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dockworth Lane, Bradford 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

0: के बिछड़े हुए हम आज कहाँ जाके मिले। जी हाँ जी, बहुत ही खूबसूरत दो गाना था किशोर कुमार और लता जी की खूबसूरत आवाज़ों में आपने सुना। आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो को 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे आप सुनते हैं पूरी दुनिया में। इसके अलावा DAB के जरिए आप सुनते हैं कीतली, इल्कली, ब्रैडफोर्ड, स्किप्टन, लीड्स, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एक्रिंगटन और मिल्टन केन्स में। और मैं शहनाज मंसूर आपके साथ साथ हूँ दोपहर दो बजे तक। जी हाँ जी, दोपहर दो बजे तक मेरा और आपका साथ है। पुराने सदाबहार गीत हैं, यादों का सफ़र है और आप हमारे संग संग हैं, हमारे साथ सवार हैं, यादों की गाड़ी में हमारे संग हैं। इस गीत को, इन गीतों को और इस सफ़र को आप इंजॉय कर रहे हैं, आप सभी का बेहद बेहद शुक्रिया। जैसा कि हमने बात की थी सायरा जी से, हमारी बात हुई थोड़ी देर पहले, बहुत अच्छा लगा, वो भी प्रोग्राम को सुन रही हैं, गीतों को एंजॉय कर रहे हैं हमेशा की तरह। ईद की खुशियों में वो भी मसरूफ़ हैं, शॉपिंग में, घर की सफाई में और खाने वाने की तैयारी में। सभी घरों में ऐसा ही हो रहा है, तो सभी को जो भी ईद की तैयारियों में मशगूल हैं, शॉपिंग कर रहे हैं या शॉपिंग कर चुके हैं, खाने पीने की प्लानिंग हो रही है कि क्या कुछ बनाना है, क्या कुछ करना है, कहाँ जाना है, किसने आना है, तैयारियां हो रही हैं। आप सबको ये हफ़्ता जो है बहुत ही बाबरकत हफ्ता है। हज का भी दिन, हज भी आ रहा है और ईद भी आ रही है, तो आप सबको हमारी जानिब से, सनराइज़ की तमाम टीम की जानिब से, आप तमाम सामीन को और जो भी ईद की ईद मना रहे हैं, हज पर जो जा चुके हैं, उनको उनका हज मुबारक हो, वो खैरियत से लौट कर आएँ अपनी फैमिली के पास और ढेरों बरकतें अपने साथ, अनायतें अल्लाह पाक की अपने साथ लेकर वो आएँ, अपनी फैमिली के लिए भी वो खुशियों का बाइस बने और बहुत बहुत मुबारकबाद उनकी फैमिली को भी, जिन्हें कि ये हज का जो है वो नसीब हुआ है ये इसमें इस साल, और वो जो खुशकिस्मत हैं जिन्हें ये ऐसा मौका मिलता है। अल्लाह करे सब खैरियत से लौट के आएँ जो भी हज पर गए हैं, सबके लिए दुआएं हैं। और ईद की खुशियां तो जो है वो हमेशा ही आती हैं, ईदें आती हैं, ईदें जाती हैं और इस ईद की खुशियां भी बहुत करीब हैं, मगर हमारा दिल जो है ना वो कभी कभी क्या, इस मौका पर, हर खुशी के मौका पर माजी की गलियों में चला जाता है, वहाँ जहाँ वो लोग थे जिनके साथ ईद वाकई ईद होती थी, उनकी यादें आती हैं, वो दिन याद आते हैं जिनके कैसे ईद मनाया करते थे हम अपने बड़ों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, और अब हम अपने बच्चों के साथ मनाते हैं और उन यादों को भी ताज़ा करते हैं और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो आप सबको एक बार फिर से हज मुबारक हो, ईद मुबारक हो। तो ये जो डेडिकेशन का सिलसिला है वो भी हम जारी रखेंगे और आपके पैगाम भी जो है वो भी, उनका सिलसिला भी जारी रहेगा। पहले आपको टाइम बता देते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का जो टाइम है वो है 19 मिनट्स पास्ट 1। जी हाँ जी, 19 मिनट हो चुके हैं 1 बजकर।

तो पढ़ते हैं डेडिकेशंस का सिलसिला जारी करते हैं। ये आने वाला गीत हम नाम करना चाहेंगे हमारे भाई तारिक सूरफी भाई आपके नाम करना चाहेंगे, आपकी जानिब से, आपकी तमाम टीम के नाम, आपके तमाम दोस्तों के नाम, आपके बाबा जानी के नाम, हीरा खान जी के नाम, महबूब इलाही के नाम, वाजिद हरिस फिल्म में है उनके नाम, चौधरी मुजफ्फर के नाम, अब्दुल कयूम फ्राइजिंग हॉल में है उनके नाम, अयूब चौहान जो कि मैनचेस्टर में है उनके नाम, वाजिद हरिस फिल्म में है उनके नाम, जावेद मीर भाई के नाम, चौधरी आसिफ रियासत भाई के नाम, सुल्तान महमूद कराची वाले भाई के नाम, चौधरी फरियाद के नाम, तारिक भट्ट के नाम, कियानी मुदस्सर के नाम, परवेज खान के नाम, आमिर शहजाद के नाम, महबूब इलाही के नाम, और खास तौर पर आपके दोस्त हैं, नई एंट्री है मलक इसहाक के नाम, जी हाँ जी उनके नाम भी करते हैं ये आने वाला खूबसूरत गीत। शौक चंचल संगीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है, मुझे उम्मीद और यकीन है कि आपको अच्छा लगेगा। तो आइए सुनते हैं। हाय अल्लाह हाय अल्लाह कहाँ जाएं दिल वाले।

कभी हाँ कहें, कभी ना कहें, कभी झूठ मूठ मेरी जान कहें। हाय अल्लाह मर जाएं। दिल वाले बहुत ही खूबसूरत शौक चंचल सा चुलबुला सा गीत था जिसे आपके गोशे गुजार किया। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो बढ़ते हैं एक और खूबसूरत से गीत की जानिब। ये गीत मैं नाम करना चाहूँगी वाजिद भाई आपके नाम करना चाहूँगी, आपकी जानिब से आपकी तमाम टीम के नाम करना चाहूँगी जो इस वक्त सनराइज़ की नशरियात को सुन रहे हैं। आपने महबूब इलाही के लिए गीत सुनना चाहा है और अयूब चौहान के लिए, जावेद मीर भाई के लिए, चौधरी आसिफ रियासत के लिए, चौधरी फरियाद के लिए, तारिक भट्ट हैं उनके लिए, कियानी मुदस्सर के लिए, परवेज खान और आमिर शहजाद के लिए, और जितने भी आपके दोस्त सुन रहे हैं चौधरी मुजफ्फर के लिए भी और अब्दुल कयूम फ्राइजिंग हाल में उनके लिए भी। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत आपकी जानिब से आपके दोस्तों के लिए और हमारी जानिब से तमाम सामेन के लिए।

करके प्यार फिर न डोली जित होवे या हार दुनिया मतलब दियो यार। इनायत हुसैन भट्टी की खूबसूरत आवाज़ में ये सदाबहार गीत आपने सुना 103.2 FM पे। अब बढ़ते हैं एक और खूबसूरत से गीत की जानी, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है और ये गीत मैं सुनवाना चाहूँगी सायरा जी आपके नाम करना चाहूँगी, और आपके साथ साथ यही गीत नाम करना चाहूँगी समीना जी आपके नाम करना चाहूँगी, सुबिया के नाम, हेना के नाम, नौरीन के नाम और फरजाना के नाम, शकीला के नाम, जूबी के नाम और नसरीन के नाम। इस उम्मीद और यकीन के साथ हमारे सामेन भी इस गीत को एंजॉय करेंगे। बहुत ही खूबसूरत गीत है, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में, आइए सुनते हैं। काहे इतना गुमान गोरी है, ये मेला दो दिन का

काहे करता गुमान चोरवा। ये मेला दो दिन का, जी हाँ जी, जिंदगी दो दिन की है, एंजॉय कीजिए हर दिन को, हर पल को, और जो भी खुशी मिले उसे बस वो कहते हैं ना कि गले लगा लीजिए। जिंदगी का कोई पता नहीं होता, बहुत ही खूबसूरत सा गीत था जिसे आपने सुना, आपने पसंद किया, आपका बहुत बहुत बहुत शुक्रिया, है ना जी, आपके लिए था और आपके जानिब से शौकत के नाम किया और एजाज और उस्मान के नाम किया, बहुत बहुत शुक्रिया यादावरी का। और चलते हैं, एक कहते हैं कि वक्त की मुनासिबत से ये गीत है शब्बीर कुमार की आवाज़ में सुनवाते हैं आपको। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम को जो कि हज की तैयारियों में हैं और ईद की तैयारियों में हैं, उन्हें ये गीत ज़रूर अच्छा लगेगा।

बहुत ही खूबसूरत पैगाम और बहुत ही प्यारी आवाज़ शब्बीर कुमार की आवाज़ में ये सुना आपने, और इसका हर लफ्ज़ हमारे दिलों को छू गया। और मुझे यकीन है कि आपने भी, हमारे भाइयों ने और बहनों ने भी जो कि हज कर रहे हैं और जिनकी फैमिली गई है हज पर, और जो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि वो यहाँ जहाँ नहीं जा पाए, उनके लिए, उनको ये ज़रूर पसंद आया होगा। और आप सब के लिए दुआएं हैं कि अल्लाह पाक ये मौका सबको नसीब करे, ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर हमें ये नसीब करे अल्लाह पाक ऐसा मौका कि हम भी उस मकाम पर जाएं। और ये जो बरकतें और खुदा की नेमतें हैं जो हम भी इन्हें मौसूल करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम भाइयों का, बहनों का, जो कि हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। मुझे उम्मीद और यकीन है कि तारिक जुहरी भाई आपको, हीरा खान जी आपको, और सायरा जी आपको भी, और हाजरा जी आपको भी, और आपकी फैमिली को भी ये पैगाम ज़रूर पसंद आया होगा। जल्दी से एक और ईद का गीत सुनते हैं आरिफ लाहौर के आवाज़ में, और फिर टाइम चेक करेंगे। ईदा आईया ने

0: हजारों ईंटें आती हैं और चली जाती हैं, मगर वो चेहरे वापस नहीं आते जिन्हें हम खुद मिट्टी के हवाले कर आए होते हैं। इसलिए हर खुशी के पीछे एक खामोश उदासी छुपी होती है। ईद की रौनक अपनी जगह, मगर बिछड़ जाने वालों की याद दिल को हर बार यही एहसास दिलाती है कि कुछ जगह कभी नहीं भरती। जो चले गए, जो बिछड़ गए, उनकी यादें हमेशा आती हैं, ख़ास तौर पर ऐसे मौक़ों पर। बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। टाइम बता देते हैं आपको उससे पहले। हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का टाइम है 1:47।
1: Looking for your dream home in Bradford?
2: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
1: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
2: Bellevue Residences.
1: Luxury, space and style.
2: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.

अपना बना के चैन चुरा के जइयो ना। किशोर कुमार और लता जी को आप सुन रहे थे। जी हाँ जी, आपको अच्छे अच्छे गीत सुना के, आपसे मीठी मीठी बातें करके तो हम जा रहे हैं। जी हाँ जी, हमारे प्रोग्राम को का ख़त्म होने का टाइम, जी हाँ जी, आज पहुंचा है। 2 बजने वाले हैं, सिर्फ 6 मिनट बाकी हैं। आपसे इजाज़त लेंगे क्योंकि बस यहीं तक थी आज की मुलाकात। शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप तमाम भाइयों का, बहनों का, जिन्होंने प्रोग्राम में शिरकत की। हमारी प्यारी सी बहन मिसेस कौर, आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही मीठी और बहुत ही प्यारी प्यारी बहना है आप। हमेशा अपने ढेरों दुआएं देती हैं आप सभी को। आपने तमाम मुसलमान भाइयों बहनों को हज की मुबारकबाद पेश की है और ईद उज़ुहा की भी ढेरों मुबारकबाद पेश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी दुआओं का, आपके प्यार का। और कर पहना, आपसे भी बात हुई, बहुत अच्छा लगा। आपके लिए हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपको सेहत तो तंदुरुस्ती दे और आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे। आज आप कुछ उदास थी तो हमारा दिल भी कुछ उदास हो गया। आपके लिए दुआ करेंगे और बहुत जल्द आपसे बात होगी इंशाल्लाह। हमारी अगले हफ्ते आपसे मुलाकात नहीं होगी क्योंकि ईद का जो है, ईद का दूसरा या तीसरा दिन होगा, लेकिन चूंकि पार्टियां जो हैं वो तो होती रहती हैं ना चंद दिन तो हमें भी कुछ ऐसी ही मसरूफियात होंगी। तो उसके बाद जी हाँ जी, 2 हफ्ते बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और ढेरों दुआएं हैं आपके लिए और मुबारकबाद है आपको ईद की भी और हज की भी। ढेरों ढेरों ढेरों ढेरों मुबारकबाद। अल्लाह करे ये खुशियां आपके लिए कायम और दायम रहें, आप हमेशा मनाते रहें अपनी फैमिलियों के साथ, बच्चों के साथ, अपने वालदैन के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो शहनाज को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अल्लाह ने चाहा। ज़िंदगी ने वफा की यादें, वो कहते हैं कि रिश्ते सलामत रहें, यादें बाकी रहें, तो मुलाकातें होती रहेंगी सनराइज़ रेडियो पर। आप सबका और हमारा अल्लाह ने के बान। बाय फॉर नाउ, गुड आफ्टरनून, खुदा हाफिज़।

मैं हूँ सायरा और आप सनराइज रेडियो के साथ हैं। और सच बताइए, आज काम करते हुए कितनी बार दिमाग ऑलरेडी वीकेंड पर चला गया था? लैपटॉप ओपन होता है, ईमेल स्क्रीन पर होती है, लेकिन अंदर से आवाज आ रही होती है, बस अब घर जाना है। और फ्राइडे आफ्टरनून्स का मूड ही अलग होता है ना। कोई डिनर प्लान्स बना रहा होता है और कोई बस ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि टेक अवे ऑर्डर करे या लेफ्ट ओवर्स खा ले। लेकिन ऑनेस्टली, ये छोटी छोटी नॉर्मल लाइफ मोमेंट्स ही तो रियल हैप्पीनेस होती है। सुकून परफेक्ट लाइफ में नहीं होता, सुकून उन लम्हों में होता है जो दिल हल्का कर दें। तो वेर एवर यू आर राइट नाउ, वेयर हाउस, ऑफिस, किचन या ट्रैफिक, रिलैक्स। फ्राइडे ऑफिशियली शुरू हो चुका है।

0: औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कवर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
1: Looking for your dream home in Bradford?
2: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
1: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
2: Bellevue Residences.
1: Luxury, space and style.
2: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.

मैं हूँ सायरा और आप सनराइज रेडियो के साथ हैं। फ्राइडे आफ्टरनून्स में एक अजीब सी रिलीफ होती है ना, काम अभी चल रहा होता है लेकिन दिल ऑलरेडी फ्री फील करना स्टार्ट कर देता है। कोई सीक्रेटली क्लॉक देख रहा होता है, कोई डिनर प्लान्स बना रहा होता है और कोई बस ये सोच रहा होता है आज अलार्म नहीं लगाना। और ऑनेस्टली अडल्ट लाइफ की रियल लग्जरी भी वही होती है, एक पीसफुल इवनिंग, कंफर्टेबल क्लोज और दिमाग पर थोड़ा कम प्रेशर। हम सब इतनी फास्ट लाइफ जी रहे हैं, नोटिफिकेशंस, डेडलाइंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि कभी कभी फ्राइडे सिर्फ एक रिमाइंडर लगता है कि ब्रीथ करना भी जरूरी है।

क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका मूड बिल्कुल ऑफ हो और फिर एक गाना प्ले हो और सब चेंज हो जाए? मैं हूं सायरा और आप सनराइज रेडियो के साथ हैं। म्यूजिक ऑनेस्टली थेरेपी जैसा होता है। कभी ओल्ड आतिफ असलम, कभी कोक स्टूडियो, कभी वो 2000 का इमोशनल गाना, और सडनली पूरा दिल रीसेट हो जाता है और फिर हम खुद ही मूवी सीन इमेजिन करने लगते हैं। रेन आउटसाइड, हेडफोन्स ऑन, ड्रामेटिक स्टेयरिंग आउट द विंडो, फुल मेन कैरेक्टर एनर्जी। कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, वो जिंदगी के चैप्टर्स बन जाते हैं। आज का नेक्स्ट ट्रैक भी वैसे ही वाइब्स लेकर आ रहा है।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रैडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ, जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे, जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
3: 24 hours a day. It's a classic hit. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard?

यॉर्कशायर, एक सीरियस सवाल। यहाँ वेदर डिसाइड कौन करता है? सुबह सनशाइन, दोपहर में रेन और शाम तक हवा इतनी कि हेयर स्टाइल रेजिग्नेशन दे दे। मैं हूँ सायरा और आप सनराइज रेडियो सुन रहे हैं। और यूके में एक स्किल तो सब सीख लेते हैं, जैकेट कैरी करना, जस्ट इन केस। लेकिन ऑनेस्टली, वेदर कॉन्वर्सेशंस भी हमारी कल्चर का पार्ट बन चुकी है। लिफ्ट में ऑकवर्ड साइलेंस हो, कोल्ड है ना आज, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट। और कभी कभी बारिश भी अच्छी लगती है, स्पेशली जब आप घर पर हो, चाय हो और बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूजिक। हर मौसम कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है, कभी सब्र, कभी सुकून। तो आज वेदर को जज कम करें, फील ज्यादा करें

कितने लोगों ने रात को ऑनलाइन शॉपिंग की और सुबह उठकर सोचा, मैंने ये क्यों ऑर्डर किया। मैं हूं सायरा और आप सनराइज रेडियो के साथ हैं। लेट नाइट शॉपिंग डेंजरस होती है ऑनेस्टली, स्पेशली जब आप स्लीपी हो और सडनली एवरीथिंग फील्स नेसेसरी। लिमिटेड ऑफर और फिर पार्सल आता है और खुद ही याद नहीं होता अंदर क्या है, लेकिन डिलीवरी नोटिफिकेशंस का एक्साइटमेंट भी अलग होता है ना। डोरबेल बजी नहीं कि हम डिटेक्टिव बन जाते हैं। इंसान छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ लेता है और ऑनेस्टली वही तो लाइफ को फन बनाता है।

0: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन दोनों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
1: Looking for your dream home in Bradford?
2: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
1: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
2: Bellevue Residences.
1: Luxury, space and style.
2: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.

आज एक टॉपिक बहुत डेंजरस है, द लेजेंडरी देसी पेरेंट लक। वो एक साइलेंट स्टेयर जिसमें पूरा पैराग्राफ हिडन होता है। मैं हूँ सायरा और आप सनराइज रेडियो सुन रहे हैं। स्कूल फंक्शंस, वेडिंग्स, मस्जिद, बस एक नजर और आप इंस्टेंटली सीधे हो जाते थे। और देसी पेरेंट्स का फेवरेट सेंटेंस, हम तुम्हारी एज में, और फिर स्ट्रगल स्टोरी स्टार्ट। लेकिन सच कहूं, बाद में रियलाइज होता है कि उनकी हर दाद के पीछे केयर होती थी। मोहब्बत हर वक्त सॉफ्ट नहीं होती, कभी कभी डिसिप्लिन की फॉर्म में भी होती है। आज पेरेंट्स को रैंडम हग या कॉल जरूर दें,

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Looking for your dream home in Bradford?
3: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
2: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
3: Bellevue Residences.
2: Luxury, space and style.
3: Call 01274-288-252 today to arrange your viewing.
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

कभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए लगता है सबकी लाइफ परफेक्ट चल रही है। मैं हूँ सायरा और आप सनराइज रेडियो के साथ हैं। परफेक्ट हॉलीडेज, परफेक्ट सेल्फीज, परफेक्ट कपल्स, लेकिन रियलिटी में हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल्स होती हैं। सोशल मीडिया हाइलाइट्स दिखाता है, रियल लाइफ बिहाइंड द सीन्स होती है। तो प्लीज खुद को किसी और की एडिटेड लाइफ से कंपेयर मत करें। फूल और चांद दोनों खूबसूरत हैं, लेकिन कंपैरिजन कभी नहीं करते। आप अपनी जर्नी पर हैं और वो इनफ है।

पेट्रोल पंप पर खड़े होते ही इंसान ऑटोमेटिकली फाइनेंशियली मैच्योर क्यों हो जाता है? बस नंबर्स चलते देखते रहते हैं और अंदर से दुआ निकलती है। मैं हूं सायरा और आप सनराइज रेडियो के साथ हैं। और फिर हम फ्यूल एफिशिएंट ड्राइविंग सडनली एक्सपर्ट बन जाते हैं। एसी बंद करो। एडल्ट लाइफ ऑनेस्टली बहुत रैंडम होती है। एक वक्त था टुवाइस एक्साइट करते थे, अब फ्यूल डिस्काउंट्स हैप्पीनेस देते हैं। जिंदगी हर एज में नए सरप्राइजेस देती है, तो ट्रैफिक में स्माइल रखें, आप अकेले नहीं हैं।

0: और नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: नफसेन जायकातुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन, दफन, फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रेडफोर्ड 7230300।

आजकल कुछ लोग वॉइस नोट नहीं भेजते, फुल डॉक्यूमेंट्रीज भेजते हैं। मैं हूँ सायरा और आप सनराइज रेडियो के साथ हैं। एक मिनट का टॉपिक, 7 मिनट का वॉइस नोट और स्टार्ट हमेशा यार बस क्विक बात थी, लेकिन ऑनेस्टली कभी कभी किसी की आवाज सुनना टेक्स्ट से ज्यादा कम्फर्टिंग होता है, स्पेशली जब कोई जेन्युइनली पूछता है तो ठीक है। कुछ आवाजें दिल को सुकून देती हैं, चाहे लफ्ज सिंपल ही क्यों ना हो। आज किसी अपने को सिर्फ टेक्स्ट नहीं वॉइस नोट भेजें

मैं हूं सायरा और आप सनराइज रेडियो के साथ हैं। फ्राइडे इवनिंग प्लान्स बहुत एम्बिशियस होते हैं। कल सुबह जल्दी उठूंगा, जिम जाऊंगा, रूम क्लीन करूंगा और फिर सैटरडे 12 बजे आंख खुलती है। लेकिन ऑनेस्टली रेस्ट भी जरूरी होता है। हम इतना कॉन्स्टेंटली बिजी रहते हैं कि गिल्ट के बिना रिलैक्स करना भूल जाते हैं। कभी कभी प्रोडक्टिव होना नहीं, खुश होना जरूरी होता है। तो इस वीकेंड खुद पर थोड़ा इजी रहें।

0: Looking for your dream home in Bradford?
1: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
0: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
1: Bellevue Residences.
0: Luxury, space and style.
1: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 723030, दास ब्रैडफोर्ड 723030।
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

यॉर्कशायर के प्यारे दोस्तों, 3 घंटे का ये सफर कितनी जल्दी गुजर गया। मैं हूँ सायरा और आप सनराइज रेडियो के साथ थे। आज हमने हंसी भी शेयर की, रियल लाइफ मोमेंट्स भी, और वो फीलिंग्स भी जो हम यूजली बिजी रूटीन में इग्नोर कर देते हैं। कभी कभी जिंदगी लिटरली पॉज डिमांड करती है, बस 5 मिनट, डीप बर्थ और साइलेंस, अंदर और स्लोली रिलीज। सुकून मिलता नहीं, बनाया जाता है। वीकेंड को सिर्फ सर्वाइव नहीं, इंजॉय भी करें।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रैडफोर्ड 7230300।

0: ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेंटफोर्ड में, पेश है बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन हैं। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसुकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 0127-4288-252 पर कॉल करें।
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Looking for your dream home in Bradford?
3: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
2: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
3: Bellevue Residences.
2: Luxury, space and style.
3: Call 01274-288-252 today to arrange your viewing.
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. A Sunrise Radio hit of the hour.
1: प्रीति की हाल चाल है तेरा?
2: हाँ हाँ दस की कहना चाहना है।
1: प्रीति तेनू पता है मैं इंग्लैंड जा रहा। इंग्लैंड जाके मैं तेनू छेती तो छेती मंगा लेना।
2: चक्या फ्लैट दा इत्थे तेरे वर्गे 3600 तुरे फिर दिया रांझे कद चंडीगढ़ दा मुंह देखिया गल करदा वलैत दी। वे जा जा एवे मूड ना खराब कर।
3: बॉबी नागरा बड़ी बेइज्जती हो गई आ। मेको नहीं भरावा बर्दाश्त हुंदा। चल चलिए पिंड नूं छड्ड तू इन्हां गल्लां नूं।
4: मेसी सही गल है यार, चल चलिए।
1: लै फिर मगरों लभदी फिरी। जरो जट सच्ची लंडन पहुंच गया।

जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर आपका मेहज़बान मौलाना फजलदाद, और ये है सनराइज रेडियो 103.2 FM, 100.6 FM अक्रॉस ब्राडफर्ड, इनफैक्ट अक्रॉस द होल ऑफ वेस्ट यॉर्कशायर, 103.2 FM, 100.6 FM, एंड यू कैन लिसन टू अस ऑनलाइन थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑन www.sunriseradio.fm। और हमारा प्रोग्राम ये हर जुमा की शाम को 8 बजे से 9 बजे तक लाइव हुआ करता है। इसमें आप भी हिस्सा ले सकते हैं, चाहे कोई दीनी मसला हो या कोई हालात हाजरा के ऊपर तबसरा हो या बैन अल-अक़वामी जो हालात हैं उसके ऊपर कोई बातचीत करना चाहते हैं या कोई नसीहत ये अच्छी बात आप शेयर करना चाहते हैं, तो ये मोस्ट वेलकम। आप ऑनलाइन आ सकते हैं और आप कॉल कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर 01274306666। मैं अर्ज़ कर रहा था ब्रेक से पहले दो अहम मौजू, टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आई वाज ब्रिंगिंग योर अटेंशन टू। द फर्स्ट वन वाज द तकबीरात तशरीक, الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد। एक तो ये, और मैंने ये अर्ज़ किया था कि ये 23 नमाजों तक होता है। It continues for 23 salah beginning from the day prior to Eid al-Adha, Eid al-Adha से पहले वाला जो दिन है वहाँ से ये शुरू होता है, और फजर की नमाज से हर फर्ज की नमाज के बाद मर्द हों या औरतें हों एक मर्तबा कम अज़ कम इसको पढ़ना होता है। यू टू रिसाइट इट एटलीस्ट वंस आफ्टर एवरी फर्ज सलाह, बट हैविंग सेड दैट यू कैन रिसाइट इट थ्रू आउट द डे एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल। एंड द सेकेंड पॉइंट आई ड्रू योर अटेंशन टू, दूसरा अहम मौजू जिसकी तरफ आपकी तवज्जो दिला रहा था, वो है रोज़ा योम अरफा का, अरफा वाले दिन का रोज़ा। एंड आई एक्सप्लेन दैट अल्लाह सुबहानहु व तआला हैज अटैच्ड अ वेरी वेरी स्पेशल रिवॉर्ड विद दिस, इसके साथ बहुत ही ख़ास सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा हुआ है, और वो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पिछले साल के भी गुनाह माफ़ करेंगे और अगले साल के भी गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ करेंगे इस रोज़े के रखने के साथ। अब तीसरी चीज़ जिसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलानी है वो है कि ईद के दिन कुर्बानी के बारे में चंद मसाइल बहुत ही अहम ज़रूरी हैं। देर आर सम वेरी इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट आई वांटेड टू ड्रॉ योर अटेंशन टू। एंड द फर्स्ट वन इज, ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स I've seen a huge misunderstanding amongst the people, and I don't understand where this misunderstanding has actually crept into. And had I not had personal experience of people asking me these questions, I would have half believed it. ये जो गलत फहमी बहुत सारे लोगों को पिछले चंद सालों से हुई है, तो खुद चूंकि उन्होंने मुझसे बार बार मुख्तलिफ लोगों ने सवाल किए, तो मुझे खुद इसका तजर्बा हुआ, वरना मरना मुश्किल हो जाता था कि इस तरह कभी सोच सकते हैं। सौवों साल से कुर्बानी हो रही है, और वो ये कि असल मसला तो ये है कि कुर्बानी जब फ़र्ज़ होती है तो हर शख्स की तरफ से एक कुर्बानी, वन कुर्बानी इज़ ऑब्लिगेटरी अपॉन यू, देन इट विल बी वन सैक्रिफाइस पर पर्सन। सो द फादर सैक्रिफाइस इज़ वन, mother sacrifices one, the son, the daughter, the uncle, auntie, everyone has an individual part, individual sacrifice. Recently, the misunderstanding that's beginning to crop up is that people are thinking that there's one sacrifice on behalf of a family, and that's incorrect. That is totally incorrect. It is not a sacrifice on behalf of a family, it is in actual fact a sacrifice on behalf of each individual upon whom the sacrifice is wajib. So that's the first
thing that we really, really need to understand and begin to remind the youngsters. And I think this is cropping amongst the youngsters generally, because the elderly, they've been performing their qurbani for many, many, many years, so they are well versed in its rules and regulations. Jo hamare bade hain, unko to ye masail azbar yaad hain, kyunki saalon saal, saalon saal ye qurbani karte rahe, uske ahkamat seekhte rahe, pakke hote rahe, yaad karte rahe. Lekin youngsters ke andar ye galat fehmi thi. वो ये समझ रहे थे कि पूरे घराने की तरफ से एक, हालांकि ये गलत है, बल्कि फी एक आदमी की तरफ से एक कुर्बानी. तो अगर वालिद हैं उनकी तरफ से अलग कुर्बानी, वालदा है उनकी तरफ से अलग कुर्बानी, बेटा है बेटी है उनकी तरफ से अलग, उनकी तरफ से अलग, हर एक की अपनी अपनी कुर्बानी होती है. इस तरह नहीं कि एक कुर्बानी तमाम फैमिली की तरफ से हो, नहीं नहीं, ये सही नहीं है. तो सबसे पहला मसला आपके सामने ये पेश करना था, नंबर एक. दूसरा मसला ये है कि कुर्बानी आपकी ईद की नमाज के बाद होनी चाहिए. द कुर्बानी दैट यू आर परफॉर्मिंग, इट मस्ट बी आफ्टर योर ईद सलाह. इट शुड नॉट बी बिफोर योर ईद सलाह. So if you are praying Eid Salah, let's say at 9 o'clock, अगर आप ईद की नमाज 9 बजे पढ़ रहे हैं, तो 8 बजे आपकी कुर्बानी अगर हुई तो वो कुर्बानी नहीं होगी. अगर 6 बजे हुई तो कुर्बानी नहीं होगी. रात को 2 बजे से पहले, ईद से पहले जो भी कुर्बानी हुई वो आपकी तरफ से अदा नहीं होगी, बल्कि आपकी ईद की

0: 5 hour or 4 hour difference in timings due to time zones across the world. Times की वजह से पाकिस्तान हिंदुस्तान ये जो मालिक हैं इनका टाइम डिफरेंस है. तो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का इन दिनों के अंदर 5 घंटे का फासला है. नाउ इन मे वी हैव अ 5 आवर डिफरेंस. सो वेयर एज इफ इट्स 12 o'clock इन द आफ्टरनून हियर इट विल बी 5 o'clock इन द आफ्टरनून ओवर देयर. तो लिहाजा जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर वो कुर्बानी कर रहे हैं 9 बजे या 10 बजे क्योंकि उसके लिए तो तकरीबन दोपहर होने की आई है. उन्होंने अपनी 8 बजे ईद की नमाज़ अदा कर ली पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल, वो तो एक मिसाल दे रहा हूँ. उन्होंने 8 बजे ईद की नमाज़ पढ़ ली और 10 बजे अगर वो कुर्बानी कर रहे हैं तो उनके लिए तो वो जायज़ है क्योंकि उन्होंने अपनी ईद अदा कर ली. लेकिन अगर वो आपकी तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं तो वहाँ 10 बजे यहाँ 5 बज रहे हैं, 5 घंटे का फ़र्क है. It will be 5 o'clock in the morning, and because it's 5 o'clock in the morning, you haven't even prayed your Eid Salah. आपने ईद की नमाज नहीं पढ़ी, और चूंकि ईद नमाज नहीं पढ़ी इसलिए आपकी वो कुर्बानी ना हुई. तो चूंकि इसके अंदर मसाइल है, that's why if you are giving it abroad, then to be on the cautious side, एहतियात का तकाजा ये है कि आप उनको कहें कि हमारी जो है afternoon के अंदर कुर्बानी कर लें या दूसरे दिन कर लें. ऐसा करते हैं, कुछ साथी कॉल के ऊपर आए हुए हैं तो उनकी कॉल भी ले लेते हैं और फिर वापस इन मसाइल की तरफ आएंगे. जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु.
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु. हाउ मौला सब ओके?
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र. एंड हाउ आर यू?
1: आई एम गुड थैंक यू. जस्ट गॉट अ स्मॉल क्वेश्चन ऑन इफ ऑन कुर्बानी.
0: जी व्हाट्स योर नेम भाई?
1: हुसैन.
0: हुसैन भाई ठीक है ओके.
1: So the question is, I know you, Marshall, you're talking about what people have been assuming and things, see things with very knowledgeable. My question is, and you see this on YouTube, and particularly this happens in the subcontinent.
0: Si.
1: When they actually give the qurbani of a camel.
0: Okay.
1: So my, as per my understanding, is the animal cannot be in any form or way damaged prior to the takbir on the animal itself before you'd slaughter the animal, yeah?
0: True, very true.
1: So, what I've seen and what which happens in particular in the subcontinent, maybe happens across the world, but when they actually perform in the qurbani of a camel, they have the animal standing up with this 1 foot tied up, yeah? So the person who's do the slaughter the animal, he goes and taps, looks for the nerve of the camel, and he slits the camel, where it weakens the camel, and the camel eventually drops on the floor.
0: Mm-hmm.
1: Then they decide to go do the slaughter or do the takbir on the camel's neck. Now, is that jais or is that not jais? And I've heard from various sources that the reason why they do that because they reckon that they can't put the camel to the floor prior to doing the takbir on its neck.
0: Mm-hmm.
1: But it doesn't make no sense where they've actually technically damaged. But you do actually see people performing qurbani of camels where they've actually tied them down properly and performed it. But then in certain cases where they slaughter the animal, where they tap. You may have actually seen it as well, to be fair, Molasa, where they tap. They've gone and tapped. They've got 1 foot of it tied up, and they slit it, and that pours out a lot of blood like a fountain. So, is that qurbani actually done of the animal or not?
0: Okay, inshallah. Good question, and inshallah, I'll try and be very careful how we say it, because remember, there's youngsters, all kind of people listening. Some people, they're not very into gory details, wagara. But inshallah, I'll try and answer the question.
1: थैंक यू.
0: जज़ाकअल्लाह खैर. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. ये थे भाई हुसैन, एंड अ वेरी गुड क्वेश्चन हुसैन. आई डोंट नो हाउ यंग यू आर. इफ यू आर वेरी यंग आई कैन कॉल यू बेटा. इफ यू आर स्लाइटली ओल्डर योर भाई. बट ऑल द सेम अ गुड क्वेश्चन, एंड आई विल रिपीट दैट इन उर्दू फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु मे नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश एज वेल. कि उन्होंने सवाल किया कि जो बड़े जानवर की और उन्हें मिसाल दी एक ऊँट की, और ऊँट की कुर्बानी होती है अक्सर ममालिक के अंदर होती है, हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर,

0: अफ्रीका के मुल्कों के अंदर बल्कि गल्फ़ वाले मिडल ईस्ट के मुल्कों के अंदर और जब हम हज पर जाते हैं तो वहाँ आप देखेंगे कि मिना के अंदर जब कुर्बानी होती है तो वहाँ ऊँटों की भी कुर्बानी होती है तो बिल्कुल कर सकते हैं और एक ऊँट जो है वो सात हिस्सों के जगह पर होता है इस इक्वल टू सेवन पार्ट्स सो यस अ कैमल कैन बी सैक्रिफाइस्ड एंड और ये बतला रहे थे कि आम जैसे कि मसला है इस मसला दैट एनी एनिमल दैट यू आर गिविंग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सैक्रिफाइसिंग इट इट हैज टू बी well it has to be healthy it has to have no deficiency in itself health wise or otherwise uske andar kisi kisam ki koi kami beshi nahi honi chahiye hatta ke agar uske singh bhi tooti hue hain to ye bhi kami beshi hai kyunki aap usko allah ke waste pesh kar rahe hain is janwar ko to sahi salim ho kisi kisam ki uske andar koi nuksan nahi hona chahiye और ये चाहे छोटे जानवर हों बकरियां हों भेड़ हों गाय हो बैल हो भैंस हो ऊंट हो तमाम जानवरों के अंदर ये मसला है कि वो सही सालिम हो इन ऑल द एनिमल्स रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर स्मॉल एनिमल्स लाइक द गोट एंड द शीप और वेदर दे आर लार्ज एनिमल्स लाइक द कैमल इन ऑल द एनिमल्स दे हैव टू बी परफेक्टली फाइन हेल्थ वाइज एंड ऑल्सो फिजिकली परफेक्ट एज वेल क्योंकि आप इसको अल्लाह के वास्ते अब सवाल उन्होंने ये किया कि जब वो ऊँट की कुर्बानी करते हैं तो कुछ लोग तो ऊँट को बिठा कर उसके जो पाँव हैं वो बांध कर उसको कर देते हैं और वहाँ कुर्बानी बेहतरीन अंदाज के अंदर होती है और उसके गर्दन के ऊपर जो छुरी चलाकर और फिर खून बहाया जाता है लेकिन कुछ लोग इस तरह करते हैं कि ऊँट अभी खड़ा खड़ा होता है ऊँट खड़ा खड़ा होता है और उस वक़्त उसको यानी कट की जाती है और फिर वो थोड़ा सा कमज़ोर होकर जब बैठते हैं तो फिर बाकी उसकी कुर्बानी की जाती है तो भाई दोनों तरीके बोथ ऑफ देम आर अलाउड आर जायज इसकी वजह ये है कि व्हेन द फर्स्ट कट इज़ हैपनिंग यू आर एक्चुअली स्टार्टिंग योर कुर्बानी ऑफ कोर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ बीइंग ह्यूमेन इस्लाम में The welfare of the animal is very, very important. ताकि जानवर को तकलीफ न हो या कम अज कम मिनिमम तकलीफ हो That is something that is emphasized to a great extent from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That we notice in Islam that you must give the animal minimum pain. In fact, if avoidable, no pain at all. But we can't say it's not going to have no pain. Because you are going to sacrifice it. So we say the minimum pain as much as possible, whether it's mental or physical. And that's why it's mentioned that you should not sacrifice one animal in front of another because when it sees it, it might feel for that moment that is it me next? So you're not even supposed to sacrifice one animal in front of another. And that's how deep Islam is regarding the welfare of animals. So having said that, a person must choose the strategy and the method which is the least painful and the one that is quickest, which will take it to the result of it being sacrificed. I hope that sort of answers your question. Aise karte hain, ek aur call aur le lete hain. There's quite a few calls, and then we'll come back to this mauzu, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bhai, kya haal hai aapka? Theek ho?
0: Alhamdulillah, Allah ka shukr hai.
1: Aapko advance Eid Mubarak.
0: Khair Mubarak ho.
1: Mera question na roze ke baare mein hai. मैं कुछ साल पहले हज पे गई थी तो हमारे वो सेशन होते हैं जो पहले तो मैं उधर गई थी ब्रैडफर्डी तो उनसे मैंने रोजे का कहा था तो वो कहते हैं कि रोजा नहीं रखना चाहिए
0: ठीक
1: तो अभी आप बता रहे थे मैं सारी उम्र मैं भी रोजे रखती रही जब से मैंने होश संभाला है तब से हमने घर में भी देखा सब कुछ तो उन्होंने मना कर दिया था कि रोजा नहीं रखना होता तो इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने क्यों मना किया था।
0: ठीक है, अच्छा सवाल।
1: लेकिन मैंने उसके बाद रोजा रखती रही हूँ।
0: ठीक है जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया और इंशाल्लाह जरूर सवाल का जवाब देंगे इंशाल्लाह।
1: थैंक यू वेरी मच,
0: वेलकम,
1: ओके, अल्लाह हाफिज।
0: अल्लाह हाफिज। इन्होंने सवाल किया कि अराफा के दिन रोज़ा रखा जाता है और फरमाती हैं ये आंटी के कई सालों से मैं ख़ुद भी रखती रही, लेकिन एक मरतबा हज का कोई ट्रेनिंग थी, सेमिनार था, तो वहाँ उन्होंने बताया कि आप रोज़ा ना रखो अराफा के दिन। तो वो भी अपनी जगह पर ठीक है, वो असल में जो ममानत है वो उस वक़्त है कि अब अगर आप हज के मौके के ऊपर हैं, हज के ऊपर हैं, उस वक़्त वहाँ ना रखो, क्योंकि वहाँ हज के बाकी जितने भी चीज़ें हैं, अरफात के अंदर जाना और सुबह मीना के अंदर आप होंगे वगैरह, तो वहाँ बड़ा चलना होता है और वहाँ बहुत सारे आमाल होते हैं। तो अगर आपने रोज़ा रखा तो रोज़े की कमज़ोरी की वजह से ऐसा ना हो कि आपके हज के ऊपर असर ना पड़ जाए। तो यहाँ रोज़ा रखना तो सुन्नत है, लेकिन अराफात के मैदान तक पहुंचना और वहां वकूफ करना ये वाजिब और फर्ज है। तो ऐसा ना हो कि एक सुन्नत की वजह से आपके फर्ज के अंदर कोई कमी बेशी ना आ जाए। तो इसलिए जो लोग हज पर हैं उनसे ये कहा जाता है कि हज के दौरान आप अराफा का रोजा न रखो। हाँ, हज के ऊपर जो नहीं है उन तमाम को ये हुक्म है कि आप हज, आप ये अरफा का रोज़ा रखो। दोज पीपल हु आर इन हज, यू आस्क द ट्राई एंड अवॉइड कीपिंग द फास्ट ऑफ अरफा, बिकॉज इट विल नेचुरली हैव एन इफेक्ट अपॉन यू। यू विल फील वीक, यू विल फील फटीग्ड, एंड इट विल टेक द स्ट्रेंथ आउट ऑफ यू, and it may affect you performing your duties and your rituals of Hajj. Arafah, which is the most important part of Hajj, if you feel weak and you can't perform it correctly, then it will have an effect upon your Hajj. Ho sakta hai Arafah aapse chhoot jaye aur aapka Hajj hi pura na ho. To isliye, that's why those people who are on Hajj, they are advised not to keep the fast of Arafah. But those who are not on Hajj, jo Hajj par nahi hai, unse yahi darkhas ki jati hai ke aap Arafah ka roza rakhein. Aise karte hain, kuch calls aur bhi hain, lekin break ka waqt aaya hua hai, commercial break bhi zaruri hoti hai. So let's go towards the commercial break. Uske baad agar aap ki calls baki rahi screen ke upar, then I will have a chance to take them inshallah. But I can't take any calls during the commercial break. Filhal, commercial break ki taraf jaate hain. I'm your host, Maulana Fazildad. Main hoon aapka mehzban, Maulana Fazildad. Aur yeh hai Sunrise Radio 103.2 FM, 100.6 FM. Hamara weekly program every Friday evening, har Friday shaam ko 8 baje se 9 baje tak UK time. Isi ke saath,
2: looking for your dream home in Bradford?
3: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
2: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
3: Bellevue Residences.
2: Luxury, space and style.
3: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.
0: Sunrise and Music. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dobara aapki khidmat mein hazir aapka mehzban Maulana Fazildad. Aur ye hai Sunrise Radio. ब्रेक से पहले एक सवाल हुआ था और उसके अंदर ये था कि जो ऊँट होता है जब उसकी कुर्बानी की जाती है तो लोग उसके कुर्बानी के दौरान दो मरतबा उसकी कटाई वगैरह करते हैं। तो उसके अंदर अगरचे मैंने कहा कि उसकी इजाज़त है कि क्योंकि एक मरतबा कुर्बानी शुरू हो जाए, लेकिन दोबारा उसको बिठा कर अताके अब काबू में आ गया है, तो कुर्बानी से पहले उसके अंदर किसी किस्म की कमज़ोरी नहीं थी, इसलिए उसकी इजाज़त है। दैट्स व्हाई इट्स अलाउड, बिकॉज देयर वाज नो डेफिशिएंसी प्रायर टू द कुर्बानी। बट हैविंग सेड दैट, Again, I want to emphasize this point, that Islam places a huge emphasis upon the welfare of animals. ताकि कुर्बानी के दौरान और वैसे भी जो हमारे जानवर ज़बह होते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे जो स्लॉटर हाउस वाले वो भी हमारे इन प्रोग्राम को सुनते हैं, उस जानवर के ऊपर किसी किस्म की तकलीफ नहीं आनी चाहिए, उसकी हड्डी पसली टूटनी नहीं चाहिए, उसको दौड़ना पर भागने की ज़रूरत ना हो, आपने सही अंदाज के अंदर उसको उसका लुक आफ्टर किया हो, और कुर्बानी जब हो तो जल्द अज़ जल्द उसको कुर्बान किया जाए, सो दैट व्हेन इट्स टाइम फॉर सैक्रिफाइस यू सैक्रिफाइस इट वेरी क्विकली एंड डू नॉट टेक टू मच टाइम, सो दैट देयर इज मिनिमल पेन इनसाइड देयर. I can't really emphasize that enough. The more I emphasize it, I still think that it needs even more emphasizing, because it's a misunderstanding that a lot of the people in the West have, and they believe that the way the Muslims, they sacrifice it, it is painful for the animal, therefore it's not good. And that's why I mentioned that Islam emphasizes the minimal pain, whether it's mental pain or whether it's physical pain. Having said that, ये कहते हुए ये बात भी याद रहे कि आखिरी बात करके फिर अगले आखिरी पॉइंट पर आऊँगा, और वो ये है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दूसरे मुल्कों के अंदर कुर्बानी करनी चाहिए या इसी मुल्क के अंदर, तो उसका जवाब मैं आम तौर पर मुख्तसर अंदाज में देता हूँ कि जिन मुल्कों के अंदर ज़रूरत है वहाँ अक्सर अपनी कुर्बानियाँ भेज दो, और यहाँ एक आध कुर्बानी कर लो ताकि आपके घराने के जो बच्चे हैं, यंगस्टर हैं, वो भी देख लें और उनके जहन के अंदर भी रहें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि अगर पिछले 10 साल से या अगले 10 साल तक आप दूसरे ममालिक ही भेजते रहे, तो चूँकि उन्होंने कुर्बानी देखी नहीं, दे हैव नॉट सीन इट फिज़िकली कि कुर्बानी हो गई एंड देन the meat actually comes home and you distribute it or you consume it, etc. Because they don't physically see this over a decade, they've not seen this. When they grow up, those who were 10 years old are 20 now. Those who were 20, in 10 years' time, they'll be 30. And it will be farz upon them. Unki upar farz hogi. And they will have no actual emotional attachment with this qurbani. इसी के साथ आज के इस सेशन को ख़त्म करता हूँ. दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के आराफा के रोज़े को कबूल फरमावे, ईद के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको हम सबको खुशियाँ नसीब फरमावे, और जहाँ कहीं भी जुल्म हो रहा है या अल्लाह उस जुल्म को ख़त्म फरमा, उन मज़लूमीन की मदद फरमा, और वहाँ भी उनको ईद की खुशियाँ नसीब फरमा. इसी के साथ मुख्तसर दुआ कर लेते हैं. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب العالمين تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما, ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما. یا رب العالمین ہمارے نیک اعمال کے اندر ہمیں اخلاص نصیب فرما, جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما, اور جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت مانگی ہے ان تمام چیزوں سے حفاظت نصیب فرما, اور سب سے بڑی بات وہ تیری رضا مندی ہے. یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضا مندی نصیب فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. میری طرف سے تمام سامعین کو بہت بہت عید مبارک ہو, عید کی خوشیاں اللہ رب العزت آپ کو نصیب کرے. اسی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مولانا فضل داد, یہ ہے سن رائز ریڈیو 103.2 ایف ایم 100.6 ایف ایم, ہمارا ویکلی پروگرام ہر جمعہ کی شام کو 8 بجے سے 9 بجے تک. اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
4: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day. This is Sunrise
5: from
4: Radio.
5: The Sky News Centre at 9. The family of Virginia Dufresne appealed for anyone with information about Andrew Mountbatten Winter to speak to police. Before her death, she accused the former prince of sexual assault, which he's always denied. Officers investigating him over claims of misconduct in public office while trade envoy are now looking into potential sex crime allegations. Sky Roberts is Virginia's brother.
6: We really hope that this is a step in the right direction, and I encourage the Thames Valley Police, like, we are cheering you on, and the people of the UK, good on you. Mm-hmm. Great job keeping the pressure on. Continue to do so. We're doing it here in the US as well.
5: Andrew has always maintained his innocence. Three boys' rape sentences are to be reviewed after complaints they're too lenient. The teenagers avoided prison terms following attacks on two girls in Hampshire. The head of the World Health Organization says the Ebola outbreak in Congo is spreading rapidly. Scientists in Oxford say they're working urgently to produce vaccine doses. The Red Arrows are to fly with just 7 aircraft instead of 9 for most displays until at least 2030. We understand it's because of their age, with the engine that powers the Hawk T1 jet no longer in production. The aerobatic team will still perform in full on special occasions. More than 200 previously unseen UFO files document reports of unexplained green orbs, discs and fireballs. Audio recordings dating back to 1962 have also been published by US officials for the first time. In them, NASA pilot Scott Carpenter's heard describing white particles below his space capsule.
7: I haven't seen the great numbers of these particles, but I've seen a few of them. Their motion is random. They look exactly like snowflakes to me.
5: There are some big names who won't be playing for England at the World Cup, including Harry Maguire, Cole Palmer and Phil Foden. Ivan Toney and Jed Spence are among surprise inclusions. Pep Guardiola is leaving Manchester City after a decade in charge, while Michael Carrick will be in charge of Manchester United for 2 more years. That's the latest. I'm Nick Qureshi.

0: मुच्छा नू वट चढ़ाए हुए ने।
1: क्या बात है भाई,
0: हत्था विच खूंडे लिशकाए हुए ने।
1: हद के जावा
0: ओए, साडे नाल नचो सोणियो, क्योंकि जेजी बैंस दुर्गापुरिया ते पॉपसी यार।